पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दारों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनिया जी दे हाजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहेवंद होवना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: फिर का एक रथ ग्रथ बाहो जुग जुग फेर बिटाइए ज्ञानी बुझाता है सात जुग रथ संतो का धर्म ग्रथ बाहो काल जुग रथ गन का कूल ग्रथ वाह महला पहला
1: सम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको सच मावे ऋग कह रहे आप पर भूर राम नाम देवा में सूर नए ले प्रचत जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्राब कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा मन में रंग किया कल में वेद थर्पण हुआ ना खुदाई लो भया

0: नानका गुण जगिया सब कोने में आपको पर कोने में ना कोए दर दराजू तो दीन में सब गोरा हुए अपराधी दूना निवे है जो हंता मिल गा है शीस न क्या थी जर दे कुछ दे जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक।

0: तगना तूट स्पूत महला पहला।
1: तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे निदाड़ी। तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी। वे तगाया पैवते

साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कुराए सी सौ सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म न होवे परवान ता कसमे काम हल पाए सी कसमे पावे सो करे मन हो चुदया सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी।

0: नानक कैसो मिले जे खटे काले दे महला पहला।
1: ज्यों जोर सिरना बनिया वे वरो वाद, जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए खुआर।

पहला सुचा आप हुए सुचे बैठा आए सुचे गिरखियों कोई ना पिटे हो जाए सुचा हुए कजे वे अलगा पण सलोक होती जाए सटे।

हो, फंडो होवे दो से ती फंडो चल रहा हो, फंड मुआ फंड फालिए फंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा अखिए जित जमे राजान, फंडो ही फंड बजे फंडे बजना कोए, नानक फंडे बाहर एको सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाही है पगरती चार।

कंतरा जापनी हर का के परवर आप कराए शक्ति फिर आप कराए मार एक ना गलिंद जीरिया के तुरी चढ़े गुस्यार आप कराए करे अब हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिंद।

देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बल बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बिवेक दान विसाह दान परसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगा जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रख आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिआं दे मान नेताणिआं दे तान नेउटिआं दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसा दीवार दे भोग जी की अरदास भुल चुक माफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा।

ओहंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिन्ह अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह साहन गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कहत तो सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत समाप्त जग और न जाहे मह तम मैं अवतार जागरयान किया तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पिया यह पद्धत ते मत चूकह रे मन भेद विभेद न जान बिया प्रत्यक्ष हृदय गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लिया दिलो मोहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रतीश खुदाए रंग दीदार के विसरया जिन नाम ते पोए पारथिए आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से परवदगार अपार अगम बेअंत तू जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी सुकह टल गुर सेविया
अहनिस सहज सुपाई, दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसोहो कुरसोहो चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह दशाहो, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा

तिस पह आप विचारी। दर्शन हर देखण कहताई, कृपा करहि ता सतगुर मिलहै, हर हर नाम त्याई। कोई आन मिलावै, मेरा प्रीतम प्यारा, हौ तिस पह आप विचारी। दर्शन हर देखण कहताई, कृपा करहि ता सतगुर मिलहै, हर हर नाम त्याई। रहाउ जे सुख देहे ता तुझे अराधी, दुख भी तुझे त्याई। जे भुख देहे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। अखा फेरी पानी ढोवा, जो देव है सो खाई। नानक गरीब ढह पया द्वारै, हर मेल लहो वडियाई। अखी काड धरी चरना तल, सब धरती फिर मत पाई। जे पास बहाल है ता तुझे अराधी, जे मार कढ़े भी त्याई। जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदा ता छोड़ न जाई। जे तुद वल रहे ता कोई कहो आखा, तुद विसरिया मर जाई। वार वार जाई गुरु ऊपर, पै पैरी संत मनाई। नानक विचारा भया दीवाना, हर तौ दर्शन कहताई। चखड़ झागी मीहो वरसै, भी गुर देखण जाई। समुंद सागर होवै बहु खारा, गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै, त्यों सिख गुर मिल बिगसाई। सेवक का होए सेवक वरता,
कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पह, गुर मिले गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे, गुर विच दे तुझे त्याई। जो तुद सेवह सो तू है होवह, तुद सेवक पैज रखाई। भंडार भरे भगती हर तेरे, जिस भावै तिस देवाई। जिस तो देह सोई जन पाए, होर निफल सब चतुराई।

तिस पह आप विचाई, दर्शन हर देखण कै ताई, कृपा करहे ता सतगुर मिलहै, हर हर नाम त्याई।

माता तर्थ महत दिवस रात दुविधाई दया खिले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया बच धर्मरो करमी आपो अपनी के नेड़े के दो जिनी नाम त्याया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम त्याया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गए मसकत नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का वाहे गुरु जी की फतेह। Thank you.

दुख दारू सुख रोग भया दा सुखताम न हो। तू करता करना मैं ना ही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाय लख्या रहा। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना।

राग आसा महला चौथा सोपुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संतह जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना।

तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैं डासाई जो तौ पावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ पई ले निवासा पानी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबियाले मन एक न चेतस मूड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई परापत मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ जप

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोहे बचावह। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन को आज संगरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रुन को पल मोह बद्ध कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, काट काट के पट पट की जानै। जाब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जाब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूर कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बेद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा।
ਅੰਡਜ ਜੀਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ਉਤ ਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੋ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਕਹੋ ਸਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ਸੁਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸਰੂਪ ਸੁਅੰਭਵ ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੀਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਿਤ ਹੋਇ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਇ ਤਾਹਿ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤ ਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹਿ ਨਿਹਰਿ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹਿ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਾਰੋ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ਦਾ

आई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे।

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होय उधारो एह वस्तु तजी नह जाई नित नित राख उर धारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। सलो

महिमा कथन न जाए। गौर परमेश्वर साचनाए, सच संजम करणी सब साची। सो मन निर्मल जो गुर संग राची। दरस ब्रह्म त्यान सबद ब्रह्म ज्ञान पाव।

जैसे जाल आपा खोए बरन बरन मिला तैसे ही विवेकी परमात्मा प्रवेश है। पारस परस जैसे कनक अनक धात चंदन विनाशपति वासना अवेश है। चंदन विनाशपति वासना अवेश है। सो कहौ टल गोर सेविया अहनिस सहज सुभाई।

आनद संतन का पागत गोविंद सुख संतन का बिनसी चिंद जह साध संतन हो वह एकत्र तह

अपना खसमान राजे अस्थिर रहो डोलो मत कबहो गुर के वचन आधार जय जयकार सगल भूमंडल मुख उज्जल दरबार जिनके जीत नहीं फेरे आपे भया सहाय अचरज किया करण हार नानक सच बड़ियाई जिनके जी तिनाही फेर आपे भया सहाय उचरज किया करना हारा

0: पहला पढ़ पढ़ कड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ कड्डी है खात पढ़ी है जेते बर्त बर्त पढ़ी है जेते मास पढ़ी है जेती अर जा पढ़ी है जेते सास नानक लिख है एक गल होर हो मैं चकना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया बो तीर्थ पव्या ते तो लव्या बो पेकिया दे दुख दिया सहो वे जी अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बो दुख पाया दूजा पाया।

0: खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर सामानो आजो नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखानेओ गुरु नानक अंगद वरियो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जन वरियो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल आजो नी संभो पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो अगे गहन प्रम प्रांत दहन शीतल सुखदातो असंभो उद्वेओ पुरख पूर्ण बिदातो नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समाएओ तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर पाग जुग शिव रहता गुरपुरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारन कल सहार तोए जस बगता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता।
1: त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारन शब्द सार हर सम्यदार अहमेव निवारन महादान सत गुर ज्ञान मन चौ न हुट सतवंत हर नाम मंत्र नव निज नन खुट गुर रामदास तन सर्व मैं सहज चंदोया तान्यो गुर अर्जन कल उच्चर तेरा जोग रस जान्यो जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत्सो तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत शतर गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कहमत राय अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन
2: पै निरपो मान्यो लाख में लख लखायो अगम गोचर गत कबीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन अपार सार सो पर परायो गुर गम परमान अजर जरियो सर संतोख समायो गुर अर्जुन कल उचरे ते सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गुर सूर शब्द होमे निवारो पंचाह निदल्यो सुन सह निज कर सहारो हर नाम लाग जग उदरियो सतगुर दे बसायो गुर अर्जुन कल उचर ते जन के कलस दिपायो गुर अर्जुन कल उचर ते जन के कलस दिपायो
3: सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख पर तख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जग मग तेज भूमंडल छायो पारस परस परस

चित सन्मुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सकल सृष्ट लग बेतरो तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाहीं और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व

0: अंत न पावत देव सभय मन, इंद्र महाशिव जोग करे, फुन वेद बरंच विचार रहो, हर जाप न छाड़ियो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जगतारन को, गुरजोत अर्जुन माहे तरी। जग और न जाहे महात्म में, अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख को टिक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मत चुक कह रे मन, भेद विभेद न जान बियो। पर तछ हृदय गुर अर्जन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: जब लो नहीं भाग लीला रुदे, तब लो प्रमते फिरते बोतायो। कल कोर समुंदर मैं बूढ़ थे, कब हूँ मिट है नहीं रे।

0: देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो।
1: काल समुंदर पै रूप प्रगट हरे नाम उदाहरण बस है संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर ना कोई मन बच जिन जान्यो भयो तहे संसार सोई। धर्म गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर।
2: सोरठे गुर अर्जुन पुरक प्रमाण पार्थो चाला नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारे हो पवजल सायर सेत नाम हरि का बोए था तो सतगुर संहेत नाम लाग जग उधरे हो जग तू धारण नाम सतगुर टूठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी।
3: अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर गुरु रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संच रहो सो कवन कह श्री गुर मोयो।
4: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तैं बैठायो। रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै असुर गेते भाग पापिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुरराम दा जिन पायो। शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन का दे आयो।
5: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अन पौ ने जा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे। एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने हमें।

सुकहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाई दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत संबंधी नूर अरसो कुरसो चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहु सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया

जिन रहै लिव नाइ, तन सहज समावै जियो। सहज समावै तां हर मन भावै, सदा अतीत बैरागी। हलत

प्रभु मन भया जियो, प्रभु मन पावै ता हुकम समावै, हुकम मन सुख पाया। अनदिन जपत रहे दिन राती,

जी की फतेह। तन्ना श्री संत महला चौथा कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर जियो कृपा करे।

बोलो जी वाहि गुरु। एक ओंकार वाहि गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती स्मरु कै गुरु नानक लंते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास। राम दास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो स्मराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर स्मरे है कर नौ निदया वैताय। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकतिया। हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया। दिग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े। आर्या नाल चिराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया। धर्म नाही हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निवाही। तिना दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो जी वाहिगुरु। बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत। देग तेग फतेह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी।